0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: हर चीज को हर सिचुएशन को देखने का हर एक का अपना नजरिया है। अब एक अमीर बाप ने अपने बेटे को भेजा एक गांव में ये जानने को, ये देखने को कि लोग गरीबी में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। एक दिन बिताकर जब बेटा वापस आया तो डैड ने ट्रिप के बारे में पूछा। पता है आंसर क्या था कि डैड, मैंने देखा कि हमारे पास एक डॉग है और उन लोगों के पास चार। हमारे पास एक फाउंटेन है गार्डन के सेंटर में और उन लोगों के घर के पास से झरना बहता है। हम लोगों के पास इम्पोर्टेड लाइट्स हैं गार्डन में, उन लोगों के पास बहुत सारे तारे हैं। उस बेटे की आखिरी बात एक्चुअली लेफ्ट हिज डैड स्पीचलेस। गेस व्हाट ही सेड इन द एंड, ही सेड, थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर।

मेरे ही किसी अजीज की सिफारिश लेकर, मेरी तो तू नहीं सुनेगा मुझे पता है, वही आएंगे मेरे साथ मेरी गुजारिश लेकर।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग एक्सप्रेस करने में थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। पता नहीं हेजिटेशन है या कुछ और, बट जो भी है गलत है। क्यों नहीं हम खुलकर बोल सकते अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को कि वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत खास हैं। पता है कई बार वक्त हाथ से फिसल जाता है और पीछे छोड़ जाता है बहुत सारा रिग्रेट। इसलिए सारी घबराहट, सारी हेजिटेशन छोड़कर उन लोगों को थैंक यू बोले जिनकी वजह से आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। और फिर देखें सामने वाले तो खुश हो गए ही, आप कितना ब्यूटीफुल और अच्छा फील करेंगे।

एक रिनाउंड म्यूजिशियन एक वायलिनिस्ट से किसी ने पूछा कि आप कितना अच्छा वायलिन बजाते हैं, कितने लकी हैं ना आप, तो आंसर पता क्या आया कि ये लक नहीं प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर मैं एक महीना प्रैक्टिस नहीं करता तो ऑडियंस डिफरेंस बता सकती है, अगर मैं एक हफ्ता प्रैक्टिस नहीं करता तो यकीन माने मेरी बीवी फर्क बता देती है, और अगर एक दिन मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करता देन आई माइसेल्फ कैन टेल द डिफरेंस। सो इसलिए कहते हैं कि आसानी से जो मिल जाए उसमें वो मजा नहीं जो मेहनत करके पाने में है। पर साथ ही साथ एक कड़वा सच ये भी है कि हमें कामयाबी मिले तो वजह मेहनत, और कोई दूसरा कामयाब हो तो किस्मत। नाउ दैट्स नॉट फेयर एट ऑल।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: एक बहुत ही खूबसूरत ओल्ड लेडी से किसी ने उनकी खूबसूरती का राज पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिप्स ब्यूटीफुल हैं क्योंकि ये सच बोलते हैं, मेरी आवाज अच्छी है क्योंकि इससे किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं निकलती, मेरे हाथ खूबसूरत हैं क्योंकि ये दान करते हैं और मेरा दिल अच्छा है क्योंकि ये सबको प्यार करता है। नाउ दैट्स ब्यूटी इन द रियल सेंस एंड दैट्स द ब्यूटी टिप फ्रॉम माई एंड फॉर द डे।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, अच्छे कर्मों का फल, उस लड़की को आंखें वापस मिल गई और तब उसको इस बात का पता चला कि वो लड़का जो उसको बहुत चाहता था वो भी देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था। लड़के ने अब उससे पूछा, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने साफ इनकार कर दिया। अपने टूटे सपने लेकर वो लड़का उस लड़की की जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया, सिर्फ ये कहकर कि मेरी आंखों का ख्याल रखना, देखना कि कभी इनमें आंसू ना आए।
2: जॉनी जॉनी।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: पंजाब
2: दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
3: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

मेरी कजन ने उस औरत से पूछा कि उस लेडी के हिसाब से उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम कौन सा था। तो उस 80 साल की औरत ने कहा कि जब वो छोटी थी और उसके माँ बाप उसे खूब प्यार देते थे, वो टाइम उसकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था। फिर जब वो स्कूल जाने लगी, नई चीजें सीखने लगी, तो वो टाइम भी बहुत खूबसूरत लगा। फिर नौकरी मिली, शादी हुई, दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। फिर फैमिली शुरू हुई, अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखा, बहुत खूबसूरती से निकला वो वक्त भी। और आज वो 80 साल की है, तंदुरुस्त है, सबको प्यार देती है, सबसे खूब प्यार लेती है, खूब रिस्पेक्ट लेती है। तो अब वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये टाइम उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। तो देखिए, एक सोच ही है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। खूब प्यार और रिस्पेक्ट दो और वापस पाओ बहुत सी खुशियां और बहुत सा प्यार।

आंखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए, चेहरे तक आस्तीन वो ला कर चले गए, क्या राज था कि जिसको छिपा कर चले गए, रग रग में इस तरह वो समा कर चले गए, जैसे मुझी को मुझसे चुरा कर चले गए, आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, एक आग सी वो और लगा कर चले गए, लब थर थरा के रह गए, लेकिन वो ए जिगर जाते हुए निगाह मिला कर चले गए। अभी आपने एंजॉय की जिगर मुरादाबादी की कुछ बेहतरीन नज्मों की कलेक्शन में से एक ब्यूटीफुल सी नज्म आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।